प्रगटे नानक राय, सब सिखन को सुख दे जैते भय सहाय। आज बेदियां दी कुल विच

खेत दा मालक जदों राय पुलार दे कोल पहुंचिया आख्या राय जी इस बालक दी गाइयां मजियां ने मेरे सारे

तेरा मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा, जाके उदे कोलों हिसाब किताब ले, नहीं तो लखां दा घाटा तेनू हो जावेगा। कोई लोड़वंद गरीब गुरबा गुरु नानक कोल आ जांदा है, चोली विछांदा है, गुरु नानक तेरा ही करके विच पा देंदा है, ते कोई पैसे नहीं लेंदा किसे कोल। जाके गुरु नानक कोलों हिसाब ले, दौलत खान जदों आया

दिन हो गए तेनू काम कर दिया, पहले हिसाब ला लईए के की नफा होया की नुकसान होया, ते अगे फिर काम चलावांगे। साहब जी कहन लगे बेशक हिसाब कर लो भाई, कर लो हिसाब। ते जदों सारा हिसाब होया, इतिहास विच लिखे है के दौलत खान जदों सारा माल अंदरों गिणिया तोलिया ते की हिसाब विच लिख लिया, हिसाब कीता ते 735 रुपये गुरु नानक दे वध निकल गए। दौलत खां बड़ा हैरान होया, कहन लगा मैं सुनिया के तू सारिया नू रब दे नां ते देई जांदा है, ते फिर तेरे कोल ए पैसा नफे विच कित्थों निकल आया। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे दौलत खान जो रब दे रस्ते

निरंकार जो उपदेश आपने मेनू दिता है ना ओ मैं जप रहा हूं। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच। हे निरंकार तू आद विच भी सच सै जुगाद विच भी सच सै हुण भी सच है ते सदा तेरा नाम सच ही रहेगा। ए उपदेश लेता इत्थे गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों वेही नदी विचों बाहर ना निकले मर्दाना डरिया के गुरु नानक सच्चे पातशाह किथे गए। बाला भजिया बेबे

कितनी देर हो गई बाहर ही नहीं निकल रहा। सिपाही जयराम घबराया, बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गए। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी, भरोसे वाली सी, कहन लगी इवे ना आखो, मेरा नानक संसार विच डूबन वास्ते नहीं आया, ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा, ओदा जरूर कोई कौतक होवेगा, कम होवेगा, किसे कम नूं गया होवेगा, ओ जरूर आवेगा। और समा पा के जदो निरंकार दे कोलों उपदेश लै के गुरु नानक सच्चे पातशाह वेई विचों निकले, इत्थे सारे उदास बैठे हन के गुरु नानक वेई विच डूब गया, लेकिन बेबे नानकी नूं पता है मेरा वीर संसार नूं तारन वाला है, वो कदे डूब नहीं सकदा। ताई सारे उदास बैठे ते बुआ खड़किया, आवाज आई बेबे करतार चित आवे, उठी बजी बेबे नानकी, मेरा वीर आ गया। जां बुआ खोलिया, गुरु

आख्या इस पासे मेरे खेत हन करतारपुर विच, मैं उना नू पानी पा रही खेती नू। पंडित कहन लगा कितनी कु दूर है, आख्या कोई 400-500 मील होना इथों। आख्या तुहाडा एक लोटा पाया पानी ओ खेतां तक पहुंच जावेगा। साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकदा है तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकदा। पंडित जी कर्म कांडा विच कुछ नहीं जे पिया, जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पाओगे तां इना कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना, उधार तां प्रभु दे नाम ने करना। साथ सिखत बोलो श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या करदे सन भाई, आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन ना, ए सारियां सिफरां हन, सिफरां ए सारे जीरो हन। और बेशक एक कागज उत्ते जितने मर्जी जीरो पा दे, उना दी कोई भी मुल नहीं है जब तक उना दे अगे एका ना पवे। जे एक पावेगा, एका लिखेगा और उस तो बाद जीरो पावेगा ते 10 बन जाएगा, 2 जीरो पावेगा 100, 3 पावेगा 1000। इसे तरह दुनिया दे जितने कर्म कांड हन, जप तप हन, बिना नाम तो जे ए करेगा ता तेरे मन नू हंकार हो जाएगा और कीते हुए तेरे कर्म सारे नाश हो जाएंगे। जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्मा कांडा दा वही मुल पैणे। सत सगत बोलो श्री जिवें एके तो बिना उना सिफरां दी कोई मुल नहीं, इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करदा रह कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन देव पातशाह बाणी विच कहंदे हन, प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका,

कबीर साहब कहंदे ने सब कुछ छड़ दिता है, तनना भी बुनना भी, हुण इक्को रब दा नाम है लिखिया होया अपने हिरदे ते। किड्डी वड्डी गल है, सब कुछ छड़ के मैं हरी दा नाम, रब दा नाम, हरी दे चरण वसाए हुए हैं।

परमेश्वर आप हुआ रखवाला, परमेश्वर आप हुआ रखवाला। शांत सहज सुख खिन में उपजे।

शिवा का मतलब शिवजी नहीं है। शिव शिव करते जोर नार ते आवे बलद चढ़े डोरू टमकावे वह बलद की जून च पैंदा। मां माई की पूजा करे नर से नार होए औतरे वह नार की जून च पैंदा। तू कही आग तो आनी मुक्ति बरिया का छपानी। इस वास्ते हिंदू अन्ना तुरकू पाला दोवा ते ज्ञानी सियाणा जेड़ा एक तो बिना दूजे नूं मनदा ही नहीं। शिवा का मतलब शिव जी नहीं, शिवा का मतलब पावन। मैनू वर दिओ पावन, शिवा मैंने शुभ, शुभ वर मैनू बख्शो। केड़ा शुभ कर्म।

से उम्र सोख देना हारदा जिसदा साहेब डाटा इसनू मार न सके साहेब की सेवा।

ते जन कब होना हारे ताल जो जाने पाशा ताल जो जाने पाशा ते जन कब होना हारे।

शिवा पर मोह के है सब सर मन दे कब हम न करो शिवा पर मोह के है सब सर मन दे कब हम न करो न डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो न डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखा अपने मन को लाल दिहाओ गुटाओ चले और सिखाओ अपने ही मन को ए लाल

0: na chadu kalke na chadu balke na chadu kalke na chadu balke
1: parpat kaato pura dhan
0: iran ke mero to na gobind se aankhe lo na suniya mero to na gobind se aankhe lo na suniya
2: आस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी शस्त्रां का धनी आस खिलौना
0: मेरा तो नाम बबिंद सिंह आस खिलौना।

सलल निवास जैसे मीर की ना घटे रुच, सलल निवास जैसे मीर की ना घटे रुच, दीपक प्रदास कटे प्रीत ना पतंग की, उस सुभास जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश, आस कटे ना विहंग की, कटा कनकौ

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां।

के तुम हो सब राजन के राजा। मैं ऐसा सुनिया है ते सुन सुन के हुण मैनू यकीन

मित्र कुटुंब तन पावन मम ए मेरे मित्र मेरा कुटुंब ए तन रहण वास्ते सोने पावन समृद्ध कहंदे ने सगल समग्री ए मेरा कुटुंब मेरे मित्र तन दौलत रहण वास्ते घर ये सारी जिहड़ी समग्री है कृपा करतास खालसे ने मेरे ते कृपा करके ये सब कुछ मैनू दिता। सत्संग धन है गुरु गोबिंद सिंह महाराज है ने गुरु नानक दा रूप पर जे निम्रता वल जाइए ते कित्थे तक जा पहुंचे ने कि सारा कुछ खालसे ने कृपा करके मैनू दिता है। कवि सुंदरदास जिहड़े आनंदपुर साहिब रहा करदे सन वो कहंदा मैं आनंदपुर साहिब रह के देखे है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का दरबार कि जिन्हां राजियां महाराजियां नूं मिलना बड़ा औखा जिन्हां राजियां महाराजियां दी एक झलक देखनी बड़ी औखी है उन्हां राजियां महाराजियां नूं मैं गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार ते दरबान बन के पहरेदार बन के खलोते देखे है। ओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिदे दर ते वड्डे वड्डे राजे महाराजे आके झुकदे ने ओ गुरु इतनी निम्रता इस निम्रता विच आके कह रहे ने कि मेरा कुटुंब मेरे मित्र तन रहण वास्ते घर सब कुछ खालसे ने